0: जोजोलपाथ नेपाल सम्बचिन्छ सव पी खुद बछलागा एकादशी थो रेडियो नेपाल ख नेनादिस जिरुबी पाके नेपाल भाषा या समाचार प्रतिनिधि सभा बैठक ठाउँ सुथेसिया छिन्छता इले चोनिगुगो साधु बैठके सरकारी नीति ओजिया सदतिया सलह मडिक नेजाके गुधागुदु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सदन या मङ्का बैठके सोमबार सरकारी नीति ओ ज्याजो बुना न्याङ्का दिगुख सदन मङ्गलबार सल सन्दलीय प्रतिनिधि तोयाली दंसा संसद पिन्स नीति ओ ज्याजो दति थथको विचार पोङ्का दिगु ज्याजोदु सदन मिगया सम्भावित ज्या धल कथ नीति ओ ज्यासो या त निर्णयार्थ न्यगु जुगुदु ह्यानासोङको सदन अधिवेशन आर्थिक द 2082 हेनाचोङको अधिवेशन आर्थिक दन 2083-84 बजेट नापा न्यगु गोसादु अथेना राष्ट्रिय सभा बैठक केन चिन्ता इलानिसे ठिकै त आनन्द गर्ने नदी अथिया राष्ट्रिय सभा या बैठक के न चिन्ता इजु या झिङ्या गुमिनेटे चोनीको गोसादु बैठक सरकारी नीति ओ ज्याजो दथिया सल उले ज्याजुइको सम्भावित ज्याजो दुगु धागु दुस अथियाना बैठक नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दल या नेता भीष्मराज आङदेम्बे सरकारी अलिपाङ्गु पलाया संसदीय गरिमा लोकतान्त्रिक मु या त खालाके काला कगुधेदिगुदु मु प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस सरकारी यात्रा रचनात्मक ग्वाली याता देका तयागु ज्याचो नेथना दिशे नेता आङदेम्बे श्रोत्या सुनिश्चितता व खर्च यागु क्षमता याता केन्द्रीयतया वैगु आर्थिक दया बजेट देखे मागु कना दिल अध्ययन नेकपा एमाले संसदीय दलीय नेता रामबहादुर थापा अध्यादेश पाखे राजनैतिक संरचना प्रशासन न्यायालय एकल प्रभुत्व कायम या त सोगुले सरकार निरङ्कुश शासन व्यवस्था पाखे उन्मुख जुगु टिप्पणी याना दिल सार नेता थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा या त वोगु सफलता उपलब्धि या त जनता सेवा छेले त ध्यान कोसला दिल अध्ययन बैठक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलीय नेता नापा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ल्याया बले विधि कोटिलीको ज्यामा या त इनापेना दिल सरकार संविधान संशोधन नीति ह्याकु सलासन थापिनीको समर्थन दुगु नेथना दिशे नेता प्रचण्ड छुन छु विशेष संशोधन या त सोगु खसा उकी खुला पारदर्शी कथ सरकारी नीति वा ज्यासोले दलित मिसा जनजाति उपेक्षित वा उत्पीडित वर्ग समुदाय या आवश्यकता या त कघा मफुगु नेथना दिशे नेता प्रचण्ड भूमिहीन सुकुम्बास या व्यवस्थापन नीति सेनलागु नीति मागु कना दिल थोए झोले श्रम संस्कृति पार्टी संसदीय दल या नेता हर्करास राय सरकार जनता प्रति उत्तरदायी यो जवाफदेही जुई मफुगु धक्का कुङ्खिना दिगु दुसा नेता राय सरकार बचा बिगु थे ल्यामते त स्वदेशी लजका बोलङ्की मागु ज्या मयासे सुकुम्बासी जनता या नामे ग्याचिकु बोलङ्कीको ज्या यागु धक्का कुङ्खिना दिला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाया संसदीय दलीय नेता ज्ञान बहादुर साई सरकारी नीति वो ज्याचोले कर्णाली प्रदेश मागु कथाया यी का मफुगु नेथना दिशे कर्णाली या त राष्ट्रिय प्राथमिकता विकास क्षेत्र घोषणा याना स्वास्थ्य शिक्षा व मताया विकास विशेष बजेट फ्याता इनापेना दिल अथ्याना स्वतन्त्र सांसद महावीर पुना सरकार्य दक्षीय नीति व ज्याजो विज्ञान प्रविधि व नव प्रवर्धन या नीति ठोस नीति व ज्याजो हे मफुगु धका कुङ्खिना दिल अथे या ना थिति सांसद पिसान थथगु बिच पङ्का दिगु कस प्रतिनिधि सभा मेगु बैठक थौ चिन्छता इले चोनिगु गोसादु नेपाल भारतदेखि वङ्गु फागुने लाची तगु पारस्परिक कानुनी ग्वाली नापा सम्झौता प्रतिनिधि सभा दुत बिगुदु नापाङ्गु इले फौजदारी विशेष पारस्परिक कानुनी ग्वाली नापाया सम्झौता निगुदे दथी जुगु ख संविधान धारा 279 व्यवस्था कथा सम्झौता प्रतिनिधि सभा दुत बिगु ख फौजदारी मुद्दा अनुसन्धान अभियोजन व न्याय कारवाही या झोले प्रमाण मुङ्केगु व मेगु सुच कालाबिला याता निगुदे दथी सम्झौता जुगु ख सभा अनुमोदन जुया कुटनीति पौछे धुङ्कानी सम्झौता छिलाबुल्या वैगु जुगुदु कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम सम्झौता मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा दुत अभिया दिगु ख संवैधानिक व्यवस्था कथ सम्झौता प्रतिनिधि सभा साधारण बहुमत अनुमोदन या फैगु जुगुदु सम्झौता कार्यान्वयन जुई व नेपालले जुइगु वित्तीय अपराध न्यूनीकरण याता व अनुसन्धान अभियोजन व न्याय निरूपण याता अझ लिचोलाकीगु भलसा कागुदु थियाना सम्पत्ति शुद्धिकरण वा आतंककारी ज्याके वित्तीय लगानी या निगरानी नापमा प्याची नक्सा ग्वाली ठिनीगु भलसा कागुदु अथियाना सीमा नाका जोसे सच्छी ढ्यभाया उपया ज्वला नेपाल दूत हैबले भन्सार पुलेमाको व्यवस्था या त सरकार संशोधन याइगु जुगु दु सरकार आ कायम याना तहको सच्छी ढ्यभाया सीमा उपकेगु ज्या यागु ख अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले थुज्यागु नियम थोया न्याय आर्थिक एने व्यवस्था जुगले वैगु बजेट पाखे सीमा उपकेगु नेथना दिगु ख मङ्गलबार चङ्गु प्रतिनिधि सभाया अर्थ समिति बैठक वैकलान सीमा नाचुना नेपाया सार्वभौमिकता रक्षा यागु मु फाला तराई मधेस नेपाली मनुते त दुगु नेथना दिसे उमित निथया जीवन हना अपुकेगु सरकार नीति जुगु धया दिल मनुतेगु नीति भन्सार्या सीमा सुविधा उपका तस्करिया हाट्या राजस्व चुहावट नियन्त्रण यायता दशा सरकार निर्मम चुया न्युज्यागु वेक्लम विचार पङ्का दिगु दु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा दस या माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई स नन ग्रेडेड पास मजुपिनीगु नीति वैगु असार एक गते निसे ग्रेड उपकेगु ग्रेड वृद्धि परीक्षा न्याकिगु जुगुदु बोर्डिया परीक्षा नियन्त्रक टुक्रास अधिकारी थुगुसी एसई लिचो नन ग्रेडेड जुपिन छगु लाख पी खुदो न्यास हेमा विद्यार्थी नीति मौका परीक्षा बित असार एक गते निसे नौ गते तक ग्रेड उपकेगु परीक्षा या तसनागु जानकारी ब्यादिल ग्रेड वृद्धि परीक्षा नीति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्वपु दुगु विद्यालय या त ई तना कक्षा न्याके त इनाफ यागु दुसा बोर्ड एसई या लिचो चित्त बुझे मजोसा हान पुनर्योग यागु तालिका नापा पिथङ्गु दु लिचोले चित्त मथु चित्त बुझे मजो पिन्ता पुनर्योग या नीति जेठ एक गते निसे सात गते तक ई कोछिनागु जानकारी वेक्ल ब्यादिगु खस वङ्गु चैत्र उन्नाइस निसे एक्काइस गते तक न्याकु जाँच लिचो दास उनातिस नि गुनु तक सार्वजनिक याइगु जुगुदु सरकार विद्यालय तया शैक्षिक व भौतिक पूर्वाधार अवस्था विशेषण तव्याको अध्ययन याना चङ्गुदु प्रतिनिधि सभाया शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति मिग चङ्गु बैठके शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल सरकार देन्याङ्कय फुक्कम भनेकुथी भवन कासा मैदान शिक्षा कर्मचारी विद्यार्थी हो मेपी मेगु संरचना तेगु तव्याको अध्ययन याचनाको अध्ययन वैगु तथ्य लिधस्या विद्यालय तया फुकम पूर्वाधार पुनः संरचना या आएको धया दिल लक्षी दुने यसई परीक्षा लिचो सार्वजनिक या आएको सरकार या बचा छेलाबुला जुगु कना दिसे मन्त्री पोखरेल यसई परीक्षा ता मलाई पनि विद्यार्थीको नीति पूरक परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन या आएको बचनापा बिहा दिल उगु बैठकै मन्त्रालय सहसचिव शिवकुमार सापकोटा मन्त्रालय आ तक्क यागु ज्याया विशेषण धलदुत बिया दिसे देन्याङ्क नि हेदो सामुदायिक विद्यालय निकुलाख सुई निदो सचिव यामा शिक्षक व कर्मचारी त दुगु जानकारी नपा बिया दिल शिक्षा व मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी वाले निनु विदा बिगु सरकारया कोछिना लिपा हिउँदे व बर्खा या विदा कटे जुइगु जानकारी बिगुदु पाठ्यक्रम कथ आख बुनिगु बङ्केगु पु मोनिगु जुगुले हिउँदे बर्खा विदा या साभिक या पी ज्ञानु या त सुइनु कायम या नागु केन्द्रीय निर्देशक डाक्टर श्याम प्रसाद आचार्य जानकारी ब्यादिल सोमबार निसे शुक्रबार तक पुरा यी बुनेगु बङ्केगु नापा स्वपु दैगु क्रियाकलाप या त फुक शिक्षा विकास व समन्वय इकाइ स्थानीय तह व विद्यालय या त इनाप या नागु वेकल जानकारी ब्यादिल यी पतिका प्रार्थना यी झिङ्यागु मिनेट हो नसा नेगु बजिनेगु यी सुइगु मिनेट व्यवस्थापन या त केन्द्र सर्कुलर नापा यागु दु शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मिगयाको छिना कथा शैक्षिक संस्था त्यस बुनेगु बोकेगु स्वीकृति पाठ्यक्रम तोके यागु कथै या यी मिलान या नीति विधा कटौती यानागु केन्द्र जानकारी बिगु ख धौलागिरी हिमालय स मानव पाइला लागु मिग ठाउँ खुई खुदौँ पुहङ्गुदु ठाउँ सचिव खुई नेगुमिटर त जागु धौलागिरी हिमाल म्याग्दिया धौलागिरी गाउँपालिका चार मुदी या भुगले ला संसार या नेकगु त जागु धौलागिरी हिमाले दुगु मुदी थुगुसी नापाङको खुसी आरोहण दिवस अन्यता सङ्घु ख धौलागिरी गाउँपालिका या अध्यक्ष प्रेम प्रसाद पुन थोखया जानकारी ब्यादिगु खस सन् 1960 मे 13 सँ अस्ट्रेलिया कुट डिम्बर्गर या पुचला नापाङको खुसी थो हिमाल तालाको गगु ख यही सोनिगया प्रहरी कार्यालय रानी पुखु सोनिगया थिथि थासे सडके फना नयाँ जुपी सलन समनुतिको उद्धार यागु धागु दु ये उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पुखुया प्रवक्ता नापाम प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक रमेश कुमार बस्नेत या कथ्याङ खुइ खुमा मिज निमा मिसा गुमा मचा व च्यामा मचा मिसा मचा याना मुक सचिव ङ्यामासित उद्धार याना यागु ख उद्धार यापी मध्ये पिमासित गौशाला दुगो होर्डिङ सेन्टर रेता तगु दुसा चिङखुमासित थथिति पिन्ता लल हानागु व ल्यादुपी पि गुमासित स्क्यानिङ जुया सोङ्गु कनादिगुदु सन् 2026 हापाङ्गु सोल्या सरकारी सेना व पाकिस्तान दतिया ल्वापी मोतिन सोस व नेनीमा अफगान मनु स्यागु संयुक्त राष्ट्रसँग थागु दु रिपोर्ट या कथन जनवरी 1 मार्च 31 गते तक अफगानिस्तानी झिन्सोमा मिसा व पी खुमा मचा मस्त व सोस व झिन्सोमा मिजा स्यागु थागु दु इरान दथ्यो हाक्ना आक्रमण जुसा युरेनियम गुइगु प्रतिशत शुद्धता प्रशोधन यागु पला न्याकेगु विकल्प मदैगु इरानी अधिकारी त्यो सङ्ख्या सोभिगुदु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वासिङटन ओतेरान दथियल बापुया त कया आपला जीवन क्षति जुइगु पाके मकेगु पला कने धुङ्काने इरानी संसदीय राष्ट्रिय सुरक्षा व विदेशी नीति समितीय प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई थोखया टिप्पणी याना दिगु ख इरानी आणविक ऊर्जा सङ्गठनका प्रमुख मोहम्मद इस्लामी मेगदेय आणविक प्रविधि व युरेनियम सम्वर्धन छुन सम्झौता या मफैगु कना दिगु ख फेब्रुअरी 1893 मेगु इरानी सहर तेके अमेरिका इजरायल संयुक्त आक्रमणसँग जुगु पिन हुयाल बापुलिपा इरान संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल अप्रिल 8 युद्ध विराम घोषणा यागु ख आ मौसमीय जानकारी थौ कोशी मधेस बागमती व गण्डकी प्रदेश नापान्देया हिमालय पहाडी लाग्या भतिजा खिमुइगु अलिदुगु थासेना खिमुइगु जुगु दुसा कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश चुन थासे तेके मधेस प्रदेश नापा लिदुगु हिमालय पहाडी लाग्या मो थासे व लिदुगु तराई लाग्या छकुनिगु थासे मल नापा लाप्सा तोया भतिजा तसक वाइगु सम्भावना दुसा सुदूर पश्चिम प्रदेश पहाडियो तराई लागा छु जिल्ला तेके थकफे वैगु व थो लागा छगुनीको थासे पो नापा मल व लाप्सा तोया वा वैगु सम्भावना कुबीगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु वङ्गु नि पे गौले ये सोनि ग या क्वाज नि पेङ्गु फुटी सोङ्गु डिग्री सेल्सियस दथिचु दु थाउन हिने ये सोनि गया क्वाज नि पेङ्गु निसे निकुगु डिग्री सेल्सियस दथि चोनिगु दुकुमा दुसा थाउ सुते ये सोनि गलेङ्या ता इजु या झिन्छगु मिनेटे लुया वोगु सूर्य शनि ल खुता इजु या ङे छगु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार नेना दिस शुभ
1: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ।
2: नागरिक लगानी कोष

माया जल माटो भन्दा ढुङ्गा निसार ढुङ्गा निसार दिन बिचमा गैरी पर्यो तल त्यहाँ माया जल गैरी पर्यो तल त्यहाँ माया जल

गोर्खी टोङ्गुला सकसुक माग्योसी सक्दु क्युन्जकु सेन्वाय तुरङ्ग्याने नेपाली काङ्ग्रेसकी छोक्मी अर्जुन नरसिंह केसीकी सिलोन साहकी छोक्ने नोर्लोन पोवाग्लेकी प्रस्ताव जोक्थोपु इन्सिनाङ सिलोन साहकी छोक्दुला सकसुक मिकितुप लुक्सो ल्यामु मिन्दुप सुङसुङ तुरङ्ग्याने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी गोठित ज्ञानबहादुर साहीकी सिचु तेदिन ल्यारिम कोर्की टोङ्गुला सुङकी चो किराङ प्रस्ताव जगोताङ लेन ग्यागोला सिलोन साहकी इन्जिक मिन्जिक सकसुकीगो सुङसुङ प्रतिपक्षी सोकी सग्मी तुई सुङलाप नगिन सकदुला ङोकुल ग्यासीमा रासोपाकी सचेतक सो कविन्द्र बुर्ला कोटिकी सिलोनकी सुङकी सिचु तेजिन ल्यारिमला सकसुक किराङ गो स्वरूप तामिया ठिम्ला मेतुप सुङसुङ तुरङ क्याने नेपाली कम्युनिस्ट सोकी सचेतक सो युवराज दुलालकी प्रतिनिधि सभाकी नियमावलीला सिलोन सिग्याल्ला हुतु पर्ला ताङ नन्दे हुतु पर्ला तिराङ लोन पोला सिलोनकी ल्यागेन तीर्थपु लुक्सो होतुप्सी ठिमकी टडिक लक्लेन माचोङ्गु सुङसुङ सकदुला सोग्मित ङोकुल क्युनमा जक्सीमा नेपाली काङ्ग्रेसकी सोक्सो विष्मराज आङदेम्बेकी सकदु कामा च्याङाकी तन्दोकला क्युनजोकुला टोङ्गु नाङसीमा सोक्सो डोलप्रसाद अर्यालकी सकदु कामा च्याङाकी तन्दोकला क्युनजोकु यिन प्रतिनिधि सभाकी हारिङ सकदुला सिङजिन रामचन्द्र पौडेलकी सदन निकर्की पिर्मी सकदुला जदै छर्मु ज्याक नाङ्गुप सुङकी सिजु तेजिन ल्यारिम कोर्ला टोङ्गु कितुप लागि थो उतुप सेनवाय दिसिनाङ गमाला हारिङ सकदुला सोक्सो डोलप्रसाद अर्यालकी एमालेकी सिथु सोकी गोठित रामबहादुर थापाकी दाङकी सकदुला जगनाङ्गु सुङला प्रसकी रेकर्ड तेमा मेता जोगोला निर्देशन नाङ्गुबिन सकदुला रासोपाकी छोक्मी मनिष खनालकी थापाकी जोकु तमिय रेकर्डला जोकु म्याङ्गु सु अजक्सीमा सोक्सो अर्यालकी रेकर्ड ने मेता जोगोला रुलिङ क्या नाङ्गु सेनवाय राष्ट्रिय सभाकी हारिङ सकदुला अभौतिक असांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक नितोङ गेचुग्याची कोर्की प्रतिवेदन पेश क्यानुवाए सकदुला विधायन टरिक सक्पी सोक्सो कृष्णबहादुर रोकाएकी ती विधेयक कोर्की विधायन टरिक सक्पी प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभालाई पेश क्यानुभिन् धुरा क्याने राष्ट्रिय सभाकी सकदुला सोक्मितुई सुङकी सिचु तेजिन ल्यारिम जोकु रिमाला सिलोन बालेन्द्र सागी सकदु क्युनजोकु तेजिन टोसोक्लासाङ सकसुक माक्यौ चिङै पोमु मेतुप लाका क्याउ सुङिन टसोकला सग्मितुई जकु ट्युअुई लेन सिलोन किराङ ग्यागो कोर्ला सुहजाक नाङ्वाए तुरा क्याने सग्मितुई सुङकी सुकुम्बासी तिवला थोरिम टडिक माग्या क्यान खाङबा त्यो सिकु सुङिन तुसोलाराङ सुकुम्बासी तिवला खाङबा टडिक ताङ लाका कितुप ककप तिर्गो कोर्ला सुङला सुहजकु सेनवाए सुङकी एमबी सुङ कार्य विभाजन नियमावली निटोङ गेजु ग्यासुम स्वीकृत कितुप थाक्चोत क्यानुवाए लोन्छकी हारिङदेउ सक्दुकी एमबी सुङ कार्य विभाजन नियमावली निटोङ गेजु ग्यासुम थाक्चोत क्याउ ग्याङसिङ तेजिन दलेन लक्सेलोनपु डाक्टर विक्रम तिमिल्सनाकी ख्यान्तोक नाङसुङ सक्दुला विद्युतीय सुशासन आयोग जब तेजिन जिन्क्योङ आदेश निटोङ दिन्चुथोन गुकी संशोधन स्वीकृत कितुप थाक्चोत क्यानुवाए तुरङ क्याने सक्दुकी सुङकी डोसुङ टरिक सक्पी सक्मिला प्रतिनिधि सभाकी सोक्मी सुशील खड्का ताङ योगेश गौचन थकालीला थप थाक्चोत क्यानुवाए तुरङ क्याने हारिङदेउ लोन्सोक सक्दुकी ससिङ कोर्की थेङ निसुचीकी संशोधन सिचुतियो निटोङ गेचु ग्यास सुम स्वीकृत कितुप ताङ थाक्चोत क्याउ ग्याङसिङ तेजिन दलेन लक्सेलोनपो डाक्टर विक्रम तिमिल्सनाकी ख्यान्तोक नाङ्गुबिन लोबजुङ सेन्डिक तेजिन दलेन लक्सेलोन खाङकी लोप्टा तुई यर्बु ताङ गुन्बी कुङसाङकी तुसो निमा च्याङा चेतु थाक्चोत क्यानुवाए तन्द सेक शैक्षिक सत्र चिग्ला निमा सिप्चु स्याङा कुङसाङ तेरिन वाउइन्सिनाङ दि शैक्षिक सत्रकी तन्दोकला निमा सुम्चु तिराङ कुङसाङ तेरुप गनुवाए सुङकी दुन्ठाकला निमा नि सार्वजनिक कुङसाङ तेरुप थाक्चोत क्यासीमा लोबजुङलाई फोकु कुन युङमो जबला लोनखाङकी दुगै टरी क्याउ सेनुवाए लोनखाङकी क्याउ थाक्चोत लगलेन कि तन्दोकला लोबजुङ तेजिन मानव स्रोत विकास केन्द्र कि दाङ लोबजुङ यर्ग्या तेजिन समन्वय एकाई ताङ साने देशन तह दिन्छु थोन दिनला लेन ताङने थाक्चोत लगलेन कितुब्ला निर्देशन बिन्दु सेनवाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी कोर्सुङ मक्मित सक्पी सुङकी टङबाला क्योन गेपु क्योनला नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्ककी कार्यकारी अधिकृत सो ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई जिम्वाए गेर्की सकुलकी स्मार्ट टेलिकमकी टङबा दूरसञ्चार पूर्वाधार दूरसञ्चार प्रणाली तङ दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकी ओङला लाउ नेताङला ती टङबाकी सुङकी ओङछा चेने लिलामी कितुप लाकाला सक्सु घोतुप क्योनला खोङतिवाला जिम्बुइन् ब्युरोकी सुङस्यापा शिवकुमार श्रेष्ठकी सेतुप नङसिन कार्यकारी अधिकृत सो पाण्डे लोन रिकभरी कमिटीकी चिखापकी ओङला दिलिलामी तोङ्गुप लागला सक्सुक होतुप न्याम्सिप्यामा पेउ सेनवाए मोबाइल फोन स्विच अफ क्याने टोने ढोइ होतुप नेताङला पाण्डेला जोङकी कोर्सुङ मक्मी ल्याखुङ सिन्धुली त्यामा लगलेन क्याउ कोर्सुङ मक्मीकी सक्पी रोग्रमला कमलामाई टोङ्केर वडा आङ टुक्ने सवारी जाँचगिरी मल्ला जिम्बु सेनवाए

अनिरामी भाजमेजपी थौ रेडियो नेपाले नेपाल भाषी ज्याजो जीवन दबु जुनाजी ज्याजो न्याकम उपेश महजन वयात्नाले थौ प्राविधिक रूप देवकी भण्डारीजी त ग्वाली नाच नादीको दुले थौ जु स्टोरले अटिजम केयर व फिजियोथेरापिस्ट ज्याइना दिमा डाक्टर सुरेन्द्र ब्रजाचार्य ज्यादिगु दु लस्कुस दु हजुर अनिना भाजमेजपी सुरेन्द्र ब्रजाचार्य डाक्टर साहब लिसे थौ अटिजम या विशेष वेकलिसे निनकनी यागुजीले वेकयु बच्चाको गो थन मसिकाजको बी वेक चाहिँ कीर्तिपुर दस पाहे ज्यादी म खदास वेक अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी या निर्देशक कीर्तिपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या कन्सल्टेन्ट फिजियोथेरापिस्ट लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 एसिया डिस्ट्रिक्ट डायबिटिज अवेरनेस चेयरपर्सन लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ पद्मकाष्ठपुर या चार्टर्ड प्रेसिडेन्ट कीर्तिपुर सामुदायिक सेवा केन्द्र या केन्द्रीय दुज काठमाडौँ विश्वविद्यालय या भिजिटिङ फ्याकल्टी मेम्बर अर्थात् वेकमा चाहिँ स्कुल अफ एजुकेसन नै समावेशी एजुकेसन विशेष वेकमा चाहिँ अनुभव बङ्कादी अहिले वेक गतकी जनस्वास्थ्यले एमपिएले नौ वेकमा चाहिँ मास्टर सिनादीको दुधासा ग्लोबल लाइन कोर्स अन डायबिटिज ए डेनमार्क नौ वेकमा मास्टर सिनादीको दु तासी बाजमेजमी वेकलिसे अटिजम या विशेष यागुन ह दक्ले नापा छपो नेपाल भाषामा।

छु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ साङ्गिर रिठाङनी दा ढेनमुला गैन्दिरा थिङ प्रतिनिधि सभाला तिनी लाची साङ्ग्री नोरब्लोन डाक्टर सोडी मुवागलेसे सरकारला दखाबा नोरदिङला नीति थेन गेखोर थोरी काठुई लातोजी विवाह प्रस्ताव थान्छ्युबा मुला वाला निचा चिसाङ्री काइब्लोन बालेन्द्र शाह वाना ग्यामा नोर ब्लोन डाक्टर वाग्लेसे नीति थेन गेखोर थोला काठी लातोजी बिसी प्रस्ताव थान्छ्युबा हिन्ला चिसाङ्री नोर ब्लोन डाक्टर वाग्लेसे प्रस्ताव थान्छ्युबा लिचा प्रतिपक्ष दलला सांसद कादेसे काइब्लोन शाह खादोला विवान अवरोध लाबा मुबा सुङबोन डोल प्रसाद अर्याल थेन दुई ऋषि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलला गोबन भीष्म राज आङ दम्बेसे नीति थेन गेखोर

लासी झिन्बा लिचा खाज्यु थिम्से काइब्लोन आताना काठी लाबारी आखाम्बा हिन्ला चु पाङदोजी भिवान राङकादे गाछाला थिम्दा खलासी गाछा निबारी खावा हिन्ला बिसी सुङबा मुबा वाल सेङबारी रो लाबादा लानन रेम मोइजेन लासाइनोन प्रतिपक्षी कदेसे अडान आख्लाबा लिचा प्रतिनिधि सभाला निचा चिसाङनोन सुङबोन अर्यालसे चुइङा मिनेटदा स्थगित लासियोबा मुबा राष्ट्रिय सभाला तिनीला चिसाङरी अभौतिक असांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक 2081 सम्बन्धीला प्रतिवेदन थान्बामुला चिसाङरी विधायन व्यवस्थापन समितिला चोहो कृष्ण बहादुर रोकाएसे अभौतिक असांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक 2081 सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिला प्रतिवेदन सभारी थान्बा हिला चिसाङला आकस्मिक धुइरी ताम थान्बा सांसद कदेशे सरकारला ठिम्थेन गेखोर थान्बा धुइरी गुङरिन रेसी ब्राबा थेन संसदरी आखाबा बिबा ज्याबा थेन जेबा ताम आहिन विमान संसदरी रेबा प्रश्न कादेला काइब्लोन से जवाब पिनबारी माग लसियुबा मुबा सरकार से नेपाल सरकार गे विभाजन निमावली 2083 स्वीकृत लबा निर्णय लबामुला ब्लोन सेङ झाङला तिनीचिबा चिसाङसे नेपाल सरकार गे विभाजन निमावली 2083 स्वीकृत लबा निर्णय लबामुला बिसी सञ्चारथेन सूचना प्रविधि ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हासे सुङबामुला चिसाङसे विद्युतीय सुशासन आयोग शोभाथेन सेङबा अध्यादेश 2079 संशोधन स्वीकृत लबा निर्णय लबामुला चुराङलासिन चिसाङसे सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिला सदस्यरी प्रतिनिधि सभाला सदस्य सुशील खड्का थिएन योगेश गौचन थकालिदा मनोनयन लाभा निर्णय लाभामुला सञ्चार थिएन सूचना प्रविधि ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हासे भ्रष्टाचार दा काशी हुल लाथेन मिनिला हित्री ब्राबारी सरकार प्रतिबद्ध मुला विशेष सुङबा मुला सञ्चार थिएन सूचना प्रविधि ब्लोन खाङ सिंह दरबारी तिनी लिङ्गो लासियुबान ब्लोन डाक्टर तिमिल सिन्हासे सरकारला खाजिबैनोन निकायसे खालैला स्वार्थरी गे लाबा मनाङसाम युल्ला निकायका दे ग्याम चुदा च्याबा साइबा लाबा बिसी सुङबा मुबा गेखोरी ब्लोन डाक्टर तिमिल सिन्हासे लोकतन्त्र दा कोङबा सोबारी जिम्मेवार पत्रकारिता तोला सुङबान गैरी जिम्मेवार पत्रकारिता थेन लोक कल्याणकारिणी विज्ञापनला मिन्डी लाबा अनियमितता दा कादोला बिसी सुङबा मुला स्यार विज्ञान थिएन प्रविधि ब्लोन खाङसे लोफखाङला हिउँदे थेन बर्खे बिदा दा दुई चुई घाँरा था बामुला धाते दोना गिक शैक्षिक सत्रारी ब्लिचुई घाँरा बिदा पिनबान खाबा चुरङबा बिदा कादे चु शैक्षिक सत्रारी विषाम सोम चुइरा जेखेन तासे दामुला सरकार से हप्तारी निरा सार्वजनिक बिदा काम्रे शनिबार थिएन दिनिरे आइतबार पिनबा निर्णय लामा ब्रिबा डोबारी ताबा समस्या दा च्याङना सोबारी ब्लोन खाङसे चुराङबा व्यवस्था लातो बाहिनला ब्लोन खाङला निर्णय सेङबारी स्यार्थेन मिलुइ स्रोत विकास केन्द्र से तिलमा गोर निश्चुई निस नोन स्यार विकास थिएन समन्वय इकाइ थिएन स्थानीय तहदा चिठी पुइसी निर्णय सेङबारी पाङबा मुला माध्यमिक स्याहार परीक्षा एसइरी सिन्धुपाल्चोकला गोर्निस सरकारी लोपखाङला लोबोन मोकोन फेल ताबामुला स्याहार विकास थेन समन्वय इकाइ से पाङबा अनुसार लिसङ्खु पाखर गाउँपालिकाला बुद्धदय मावि धर्मदय मावि चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाला वन देवी मावि चौतारा बलेफी गाउँपालिकाला वन साँगु मावि भोटेकोशी गाउँपालिकाला मार्मिक मावि थिएन भीमसेन मावि थिएन हेलम्बुला हेलम्बु बोधी सोत्त मोडेल स्कुल रे खाजिबैनन् विद्यार्थी कादे से पास लबारी आखाम्नी निर्वाचन आयोग से 2084 साल डी लाबा स्थानीय तहतेन प्रदेश सभाला चुनाव तिरारिन लाबारी ग्लेटिम दल कादेदा प्रस्ताव लाबा मुला आयोग से पाङबा अनुसार 2084 वैशाख सोमचुइला कुनु स्थानीय तहतेन होजान दिङरी मङ्सिर भ्लिला कुनु प्रदेश सभाला धानपो कादेला घे दुई थुम्बा ताबासे चु निनोन तहला चुनाव तिरेमान लामा युल्ला अर्ब ब्ली बिमा लाना टाङ्गा सोना लाबारी खाम्ला बिसी गे तेन्बा ग्रेन्पो आयुक्त राम प्रसाद भण्डारीसे सुङबा मुला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाला ग्रेन हल दखाबा असार निस ब्रेथेन कुला कुनु

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास ठीक विजय झा से सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संखुआ सभा के प्रकाश अधिकारी के संघीय संसद प्रतिनिधि सभा के सचिव पद में नियुक्त कलने। राष्ट्रपति के कार्यालय हिसाब से राष्ट्रपति पौडेल प्रतिनिधि सभा के सभामुख के सिफारिश में नेपाल के संविधान के धारा 106 के उपधारा 1 बमोजिम अधिकारी के पद में नियुक्त कलने। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार साक्य द्वारा आई जारी विज्ञप्ति हिसाब से अधिकारी के जिम्मेवारी देल गेल। सरकार नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 स्वीकृत करवाक निर्णय कलक। मंत्री परिषद के आई बैसल बैठक से नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 स्वीकृत करवाक निर्णय कल गेल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा जानकारी दिलन। बैठक से विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश 2079 के संशोधन स्वीकृत करवाक निर्णय कलक। अहिना के बैठक सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति के सदस्य में प्रतिनिधि सभा के सदस्य सुशील खड़क का आयोगेश गोचन थकाली के मनोयन करवाक निर्णय कलक। भूमि संबंधी 21 संशोधन नियम सब 2083 स्वीकृत करवाक मंत्री परिषद के बैठक के निर्णय कने संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा के जानकारी दिलन। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक में अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले सरकार के आवा वाला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के विचार विमर्श प्रारंभ कल जाके के प्रस्ताव प्रस्तुत कलने। सभा के दोसर बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के दिशा अर्थमंत्री डॉक्टर वागले नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के विचार विमर्श प्रारंभ कल जाके के प्रस्ताव प्रस्तुत कलने। बैठक में अर्थमंत्री डॉक्टर वागले प्रस्तुत कने प्रस्ताव लगले प्रतिपक्षी दल के सांसद सब प्रधानमंत्री शाह के उपस्थिति के मांग करत अवरोध शुरू कलन छे। अवरोधक बीच सभामुख डोल प्रसाद आर्याल संग समय मांग क नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता भीष्मराज आंगदेम्बी नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के विचार विमर्श में प्रधानमंत्री शाह के उपस्थिति आवश्यक अनिवार्य रहल बतौलन। नेता आंगदेम्बी यदि प्रधानमंत्री शाह रोगी छी जानकारी करावा चाही नहीं तो नीति तथा कार्यक्रम जहन महत्वपूर्ण विचार विमर्श में प्रधानमंत्री उपस्थित हवाक चाही आई के उपस्थिति के लिए रूलिंग करवाक लेल सभामुख संग मांग कलन। बैठक में सभामुख आर्याल सरकार प्रस्तुत केने नीति तथा कार्यक्रम में विचार विमर्श का आई निर्णयार्थ प्रस्तुत करवा कार्यसूची रहल बावजूदो यदि संभव नहीं भेल तो कल के लिए प्रधानमंत्री संग संवाद का आगू बढ़वा कहत विचार विमर्श आगू बढ़ावा सहयोग करवाक लेल सांसद सब के आग्रह कने छलित। वो प्रधानमंत्री के उपस्थिति के लिए रूलिंग से अधिक संवाद क अवस्था बुझ कर स्वयं सभा संचालन के लिए आगू बढ़ब आ सरकार के प्रधानमंत्री उपस्थित होब नहीं सकल विषय में लिखित प्रस्ताव आयल अवस्था में विचार विमर्श आगू बढ़ाब सहयोग करवाक लेल से आग्रह कलन। राष्ट्रसभा के आजुक बैठक में आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए सरकार के नीति तथा कार्यक्रमों पर विचार विमर्श प्रारंभ भेल। बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के दिश से अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले राष्ट्रपति से संघीय संसद की संयुक्त बैठक में प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए सरकार के नीति तथा कार्यक्रमों पर विचार विमर्श प्रारंभ कल जाए के प्रस्ताव प्रस्तुत कर संघीय विचार विमर्श शुरू भेल। बैठक में आवा वाला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के विचार विमर्श में सहभागी सांसद सब नीति तथा कार्यक्रम वास्तविक किसान की राहत देव नहीं सकल बतौलन। सांसद सब प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम से नागरिक में आशा भरोसा जगाव नहीं सकल कहत प्राकृतिक गैस उत्पादन आय के उचित उपयोग जल विद्युत योजना सब के प्राथमिकीकरण के विषय के समेटक लेल सेहो सुझाव रखलन। सांसद सब विपन्न वर्ग मध्य प्रदेश सबल संघीयता समावेशिता के सुदृढ़ीकरण लगायत विषय में नीति तथा कार्यक्रम मौन रहल कहित सरकार के कार्यशैली आ नीति में एकरूपता नहीं भेल जिक्र कलन। अहिना सांसद सब देश के साधन स्रोत उचित परिचालन कृषि शिक्षा रोजगारी आर्थिक विकास के स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम आना नहीं सकल बतौलन। सांसद सब संविधान संशोधन के विषय में लक्षित वर्ग समुदाय लगायत सर्वपक्षीय विचार विमर्श परामर्श का छूटल विषय के प्राथमिकता देल जेबाक चाही सुझाव रखलन। अहिना आजुक बैठक में विधान व्यवस्थापन समिति के सभापति कृष्ण बहादुर रोकाया अभौतिक आ सांस्कृतिक संपदा संरक्षण विधेयक 2081 संबंधी विधान व्यवस्थापन समिति के प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश कलन। इससे पहले राष्ट्रसभा के आजुक बैठक में सांसद सब प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह सदन आ प्रश्न सब प्रति जवाबदेही उत्तरदायित्व हेबाक चाही कहकर सरकार के ध्यानाकर्षण करौलन। बैठक में सांसद सब प्रधानमंत्री शाह
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुति के बीच में उठ कर जाय वाला आ तथा संसद में अनुपस्थित होबा जेहन संसदीय मर्यादा विपरीत के व्यवहार देखौने कहित संसद में उठल प्रश्न के जवाब प्रधानमंत्री के देवाक चाहे मांग कल एना सांसद सब सुकुम्बासी सब के उचित व्यवस्थापन करवा के योजना बिना सरकार घर वार विहीन बनौने चर्च करत सुकुम्बासी के उचित वास रह के व्यवस्था तथा खाए के व्यवस्था आ रोजगार के व्यवस्था क देवाक चाहे प्रति सरकार के ध्यान आकर्षण करौल राष्ट्र सभा के दोसर बैठक काल वैशाख 31 गति बृहस्पति दिन सभा 11 बजे बैसत। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सस्मित पोखरिल शिक्षा में सब वर्ग आ क्षेत्र के पहुंच अभिवृद्धि करबाक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलने छ। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आज जनकपुर धाम में आयोजित साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा पूर्व तैयारी अध्ययन उच्च स्तरीय विज्ञ कार्यदल के प्रतिवेदन हस्तांतरण कार्यक्रम के संबोधन करत मंत्री पोखरिल स्पष्ट नीति अवलंबन कर शिक्षा में सबके पहुँच पहुँचाल जात से प्रतिबद्धता व्यक्त कलने छ। वो गुण स्तरीय एवं सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध कराव वाला निर्णय के संग आगू बढ़ल वर्तमान सरकार के सहयोग करबाक लेल संबद्ध सब के अनुरोध कलन। नेपाल सरकार के प्रवक्ता से रहल मंत्री पोखरिल मधेश प्रदेश में अखनो विद्यालय बाहर रहल धियापुता निरक्षर व्यस्क तथा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा प्राप्त कर नहीं सकल समुदाय के लक्षित करत प्रदेश सरकार सेहो

सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय सिंहदरबार में आई भेल पत्रकार भेंट घाट कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा सरकार के कोनो निकाय ककरो उद्देश्य वा स्वार्थ पूर्ति के लेल उपयोग नहीं भेल देखल गेला पर राज्य के निकाय सब से अव्यवस्था के संबंध में गंभीर आ निष्पक्ष छानबीन कायल जात बतौलनि। कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा लोकतंत्र मजबूत बनाव जिम्मेवार पत्रकारिता के आवश्यकता रहल बतबैत गैर जिम्मेवार पत्रकारिता तथा लोक कल्याणकारी विज्ञापन के नाम में भेल अनियमितता के रोकबाक चाही पर जोर दलन। मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा इंटरनेट सेवा विस्तार के संदर्भ में जानकारी दैत पहिल चरण में 4G सेवा के अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर चुकलाक बाद दोसर चरण में मात्र 5G सेवा के प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन करबाक तैयारी भ रहल जानकारी दलन। निर्वाचन आयोग 2084 साल में होवे वाला स्थानीय तथा प्रदेश सभा के निर्वाचन एक हीटा समय में संपन्न करवाक लेल राजनीतिक दल सब के प्रस्ताव कलक अछि। आयोग के हिसाबे 2084 बैसाख 30 गते स्थानीय तथा वह वर्ष अघन 4 गते प्रदेश सभा के पदावधि समाप्त भेला कारणे दुनू तह के निर्वाचन एक बेर कैला पर राज्य के लगभग 4 अरब टका से अधिक खर्च बचत होबाक कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भंडारी अय के जानकारी दिलन। निर्वाचन के मिति व्यय प्रविधि मैत्री आ व्यवस्थित बनेबाक उद्देश्य के संग राजनीतिक दल सब संग मंगल दिन विशेष विचार विमर्श कायल गेलो बतौलन। आयोग के कार्यालय में आयोजित विचार विमर्श में निर्वाचन सुधार के विविध पक्ष के संदर्भ में परामर्श भेल ओ जानकारी दिलन। विचार विमर्श के क्रम में गत निर्वाचन में जनप्रतिनिधि सब त्याग पत्र द कर प्रतिनिधि सभा में प्रतिस्पर्धा के लाकबाद खाली रहल 74 स्थानीय तह के पद सब तथा प्रदेश सभा के खाली पद सब में निर्वाचन करवाक विषय में सेहो विचार विमर्श भेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय परसा के परिसर में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कायल गेल अछि। एहि भवन से लक्षित वर्ग के सहज आ सरल ढंग से सेवा प्रवाह करवाक उद्देश्य के संग निर्माण कायल गेल अछि। प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की आय कार्यक्रम के बीच नवनिर्मित भवन के उद्घाटन करत प्रहरी के क्षमता विकास में पूर्वाधार के महत्वपूर्ण भूमिका रहत से बतौलन। महानिरीक्षक कार्की नेपाल प्रहरी में अखनो 1356 अस्थायी चौकी के भवन अपर्याप्त रहला से व्यवस्थित करब जरूरी रहल बतौलन। परसा के प्रमुख जिलाधिकारी भोला दहाल सेवा केंद्र से लक्षित वर्ग के सहज आ सरल ढंग से सेवा प्रवाह करवाक लेल अनुरोध कलन। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस अंतर्गत ई भवन निर्माण कायल गेल अछि। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस के पूर्वाधार मैनेजर शिशिर उपाध्याय 2,48,00,000 के लागत में भवन तैयार कर जिला प्रहरी कार्यालय परसा के हस्तांतरण कायल गेल बतौलनि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जल मार्ग हो तो वाला ढुआनी के सुरक्षा करवाक लेल बेलायत फ्रांस के नेतृत्व में शुरू भेल रक्षात्मक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान के समर्थन कर ऑस्ट्रेलिया तैयार रहल आई बतौलक अछि। रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस विज्ञप्ति मार्फत ऑस्ट्रेलिया आवे वाला बजट पश्चात निगरानी के लेल विमान योगदान करबाक जनौलक अछि। मार्शल 40 से अधिक देश के रक्षा मंत्री सब संग भेल बैठक पश्चात ई घोषणा कयलनि अछि जतय सहभागी सब हॉर्मुज जल मार्ग मार्फत होवे वाला ढुआनी स्वतंत्रता के लेल समर्थन के पुष्टि कयलक अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल वर्दीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार की आगामी आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा में प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध के कारण प्रतिनिधि सभा की बैठक स्थगित। वहीं नीति तथा कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सभा में चर्चा शुरू। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का प्रथम महाधिवेशन आगामी आषाढ़ 7-9 तक चितवन में आयोजित करने का केंद्रीय कार्य समिति का निर्णय। मंत्रिपरिषद द्वारा नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 स्वीकृत। सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति वीरेंद्र नगर के तत्कालीन सदस्य सचिव टीकाराम ढकाल सहित 5 लोगों के खिलाफ अख्तियार द्वारा विशेष अदालत में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिवसीय चीन दौरे के दौरान आज बीजिंग में। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक विपक्षी दलों के विरोध के कारण स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की उपस्थिति की मांग करते हुए विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक में अवरोध किया। लगातार तीसरी बार बैठक सुचारू न हो पाने के कारण सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभामुख अर्याल ने कहा कि 2 बार स्थगन के बाद पुनः शुरू हुई बैठक में भी विपक्षी सांसद अपने पुराने रुख पर कायम रहे और अवरोध जारी रखा। उन्होंने जानकारी दी कि कल होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह उपस्थित रहेंगे तथा अपनी धारणा भी प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले बैठक में प्रधानमंत्री शाह की ओर से अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने आगामी आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा प्रारंभ करने का प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग करते हुए विरोध शुरू कर दिया। अवरोध के बीच समय लेकर नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता भीष्मराज आङदेम्बे ने कहा कि नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की उपस्थिति आवश्यक और अनिवार्य है। विपक्षी सांसदों द्वारा लगातार विरोध जारी रहने पर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के मुख्य सचेतक कविंद्र बुरलाकोटी ने कहा कि नीति तथा कार्यक्रम की चर्चा में प्रधानमंत्री की उपस्थिति कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद किस नियम के तहत प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती, ये स्पष्ट किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कई पुराने नियमों को बदलते हुए आगे बढ़ रही है। श्रम संस्कृति पार्टी के अध्यक्ष हर्क सापांग ने प्रधानमंत्री शाह के अपने ही नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा में उपस्थित न रहने पर नाराजगी जताते हुए बैठक से बाहर निकल गए। आज की बैठक में सभामुख हरियाल ने एमाले संसदीय दल के नेता राम बहादुर थापा द्वारा मंगलवार की बैठक में दिए गए वक्तव्य को संसद के रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश भी दिया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11:15 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए सरकार की नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा शुरू हुई है। बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से अर्थमंत्री स्वर्णिम वागले ने राष्ट्रपति द्वारा संघीय संसद की संयुक्त बैठक में प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए सरकार की नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद चर्चा प्रारंभ हुई। बैठक में आगामी आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम पर भाग लेते हुए सांसदों ने कहा कि यह नीति तथा कार्यक्रम वास्तविक किसानों को राहत देने में असफल रहा है। सांसदों ने कहा कि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम नागरिकों में आशा और भरोसा जगाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने प्राकृतिक गैस उत्पादन और उसके उचित प्रयोग, जलविद्युत परियोजनाओं के प्राथमिकीकरण जैसे विषयों को शामिल करने का सुझाव भी दिया। सांसदों ने कहा कि वंचित वर्ग, मध्य प्रदेश, सुदृढ़ संघीयता और समावेशिता जैसे मुद्दों पर नीति तथा कार्यक्रम मौन है और सरकार की कार्यशैली तथा नीतियों में एकरूपता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के संसाधनों के उचित परिचालन, कृषि, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास के लिए स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी बैठक में विधान व्यवस्थापन समिति के सभापति कृष्ण बहादुर रोकाया ने अभौतिक सांस्कृतिक संपदा संरक्षण विधेयक 2081 से संबंधित समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की। इससे पहले राष्ट्रीय सभा की बैठक में सांसदों ने प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह से सदन और प्रश्नों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होने की मांग करते हुए सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था। सांसदों ने सुकुम्बासी लोगों के उचित प्रबंधन की योजना के बिना उन्हें घर से बेघर करने का आरोप लगाते हुए उनके लिए आवास, भोजन और रोजगार की उचित व्यवस्थापन करने का भी मांग की। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल सुबह 11:15 बजे के लिए बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। सरकार ने नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 को स्वीकृति देने का निर्णय किया है। मंत्री परिषद की आज हुई बैठक में नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 को स्वीकृत करने का निर्णय किया गया। ये जानकारी संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने दी। बैठक ने इलेक्ट्रॉनिकल सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश 2079 में संशोधन को भी स्वीकृति देने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने सरकारी निवेश प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में प्रतिनिधि सभा के सदस्य सुशील खड़का और योगेश गौचन थकाली को मनोनीत करने का निर्णय किया है। इसके अलावा बैठक ने भूमि संबंधी 21वें संशोधन नियमावली 2083 को भी स्वीकृति देने का निर्णय किया है। ये जानकारी संचार मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने दी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक ने पार्टी का प्रथम महाधिवेशन आगामी आषाढ़ महीने में चितवन में आयोजित करने का निर्णय किया है। पार्टी सभापति रवि लामिछाने की अध्यक्षता में आज आयोजित केंद्रीय कार्य समिति बैठक ने प्रथम महाधिवेशन आगामी आषाढ़ 7, 8 और 9 गते आयोजित करने का निर्णय किया है। ये जानकारी पार्टी संसदीय दल के सचेतक प्रकाश चंद्र परियार ने दी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा कि संस्थागत भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर राज्य के संसाधनों को जनता के हित में उपयोग करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। संचार मंत्रालय में आज आयोजित पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने कहा कि यदि सरकार के किसी भी निकाय का उपयोग किसी के उद्देश्य या स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता हुआ पाया गया तो राज्य के निकायों द्वारा उस स्थिति की गंभीर और निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने इंटरनेट सेवा विस्तार के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पहले चरण में 4G सेवा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के बाद दूसरे चरण में 5G सेवा को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की तैयारी की जा रही है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति वीरेंद्र नगर के तत्कालीन सदस्य सचिवों सहित 5 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में मामला दायर किया है। दुकान और कवल भाड़े से प्राप्त आय को बैंक में जमा न कर उस आय में अनियमितता करने के आरोप में तत्कालीन सदस्य सचिव टीकाराम ढकाल के खिलाफ 64,28,000 से अधिक की क्लेम्ड अमाउंट का दावा करते हुए मामला दायर किया गया है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता सुरेश न्योपाने ने दी। इसी तरह आयोग ने तत्कालीन सदस्य सचिव नरहरि तिवारी के खिलाफ 1,04,71,000 और गहेंद्र बहादुर डांगी के खिलाफ 72,78,000 से अधिक की क्लेम्ड अमाउंट का दावा करते हुए मामला दायर किया है। आयोग ने तत्कालीन लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षेत्री की पत्नी सीमा कुमारी चंद्र क्षेत्री के खिलाफ 2,90,96,000 तथा तत्कालीन सह लेखापाल खड़क बहादुर राणा के खिलाफ 2,94,78,000 से अधिक क्लेम्ड अमाउंट का दावा करते हुए मामला दायर किया है। ये जानकारी प्रवक्ता न्योपाने ने दी। केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो की पुलिस टीम ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में नेपाल इन्वेस्टमेंट मेगा बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पांडे को सिंधुली से गिरफ्तार किया है। निजी क्षेत्र की स्मार्ट टेलीकॉम की पूरी संपत्ति, दूरसंचार पूर्वाधार, दूरसंचार प्रणाली और दूरसंचार संजाल को नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण में लिए जाने के बाद उस संपत्ति में सरकारी अधिकार समाप्त कर उसे नीलामी प्रक्रिया में शामिल करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो के प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठ के अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पांडे लोन रिकवरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उस नीलामी प्रक्रिया में शामिल थे जो जांच में सामने आया है। सरकार ने निजामती कर्मचारी राजनीति में संलग्न पाए जाने पर उन्हें सेवा से हटाने की चेतावनी

0: यात्री संगठनों की सदस्यता लेने की अनुमति नहीं है। सूचना में ये भी उल्लेख किया गया है कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने, संगठन की सदस्यता लेने या चुनाव में उम्मीदवार बनने वाले कर्मचारियों को सेवा से हटाने का प्रावधान है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के साथ अपनी बेहद अहम दो दिवसीय शिखर बैठक के लिए आज बीजिंग पहुंच गए हैं। ट्रंप एयरफोर्स वन विमान से चीन पहुंचे। चीन की राजधानी बीजिंग में उपराष्ट्रपति हान झेंग ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। हान झेंग चीन के शीर्ष नेताओं में शामिल हैं। उन्हें ट्रंप के स्वागत के लिए भेजे जाने को चीन की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति को विशेष सम्मान देने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार की आगामी आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा में प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध के कारण प्रतिनिधि सभा की बैठक स्थगित। वहीं नीति तथा कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सभा में चर्चा शुरू। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का प्रथम महाधिवेशन आगामी आषाढ़ 7 से 9 तक चितवन में आयोजित करने का केंद्रीय कार्य समिति का निर्णय। मंत्रिपरिषद द्वारा नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 स्वीकृत। सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति वीरेंद्र नगर के तत्कालीन सदस्य सचिव टीकाराम ढकाल सहित 5 लोगों के खिलाफ अख्तियार द्वारा विशेष अदालत में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिवसीय चीन दौरे के दौरान आज बीजिंग में। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
1: फोर्जी LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
2: साधकहरूका लागि सङ्गीत आराधना हो। साधकहरूले उक्लेका उकाली, ओर्लेका उराली, घाम पानी, रात प्रभात, तिता मिठा भोगाईहरूसँगै साधकहरूका जीवनलाई नजिकबाट नियाल्दा भेटिएको जीवनको सङ्गालो कार्यक्रम सङ्गीत साधनामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रविधि संयोजनमा रहनुहुने रमा कोइरालासँगै दुर्गा अधिकारीको। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट हरेक हप्ता यसै समयमा प्रस्तुत हुँदै आइरहेको संगीत साधना कार्यक्रम यहाँहरूले मिडिमेपका विभिन्न फ्रिक्वेन्सीहरूसँगै FM 98, 100 र 103 MHz अनि www.radionepal.gov.np का साथै रेडियो नेपाल मोबाइल एप मार्फत पनि संसारभर हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। संगीत साधना कार्यक्रममा यहाँहरूले पुराना, कालजयी, सफल र चर्चित संगीतका साधकहरूका प्रेरक जीवन अनुभवसँगै उहाँहरूकै स्वर संगीत अनि रचनामा रहेका गीत संगीतहरू सुन्दै आइरहनु भएको छ। गत हप्ताको कार्यक्रममा हामीले यसै कार्यक्रमको प्रथम भाग स्वरूप बहुप्रतिभाका धनी वरिष्ठ संगीतकार राजु सिंहका संगीत साधनाका केही अंशलाई केलायौं भने आजको कार्यक्रममा पनि हामी वरिष्ठ संगीतकार राजु सिंहका बाँकी कुराहरू यहाँहरूलाई सुनाउनेछौं। साथमा उहाँले नै संगीत गर्नुभएका विभिन्न कलाकारका स्वरमा रहेका गीतहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यो कुराकानी, त्यो प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला एकैछिन राख्दैछौँ बसन्ती शाहीको रचना, राजु सिंहको संगीत अनि शिव परियारको स्वरमा रहेको यो मिठो गीत। त्यसपछि हामी कुराकानीको त्यो बाँकी अंशलाई जोड्छौँ।